मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून 2026। समय प्रातः के 5:58 और 56 सेकंड हुए हैं। प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। फिलहाल समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा

0: पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं जिनको अवसरों का इंतजार हो, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कर्म पर विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना, ईश्वर पर विश्वास करना है। और जब एक बार प्रभु पर विश्वास हो जाता है तो सुख दुख हमारे जीवन से हट जाते हैं, बस शांति ही शांति का आभास हमें हर पल हर क्षण होता है।

मन को कभी भी निराश न करो, बस अपने प्रभु पर विश्वास करो। जब अपने प्रभु पर विश्वास हो जाता है तो हमें हर पल यही एहसास होता है कि वो हमारे साथ हैं।

जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों का नाश कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति हमारे सभी कष्टों को हमसे दूर कर देती है। पर हम सुख दुख के चक्र में फंसकर अपने प्रभु को ही भूल बैठते हैं।

ईश्वर की उपासना से मनुष्य को शांति, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता है। जब हम अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो दुख और संकट के समय भी हमें आशा की किरण नजर आती है, जो निराशा के अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में सुख का उजाला और सकारात्मक

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। स्वर हैं अनूप चलोटा और साथियों की।

राम सखा निषादराज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषादराज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषादराज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषादराज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषादराज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बातें में जिक्र करेंगे बागों के लिए मिट्टी और पानी के जांच के बारे में। पर जो भी हमारा बागवानी का काम हम करें हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये इसी तो फसल हमारी है नहीं कि भाई जिस तरह सरसों है, गेहूं है, भाई 6 महीने की हमारी फसल हो, लंबे

0: टाइम तक ये फसल ले जाए। इसके लिए तो पहली बात उपयुक्त मौसम, भाई कौन से एरिया में किस डाल की फसल ले जाए, किस तरह का जो पानी है, कौन सी फसल का तर बढ़िया रहे, उसी हिसाब से जो है बागवानी का काम। और इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिला स्तर पर जो जिला बागवानी विशेषज्ञ हैं उनकी भी हम सलाह लें। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जिला स्तर पर जो भी बागवानी विशेषज्ञ हैं उनकी भी हम सलाह लें, और भाई मिट्टी और पानी की जांच का आधार पर फिर अपने बागवानी का काम इसमें करना है। भाई बागों के लिए जो उपयुक्त भूमि है, बाग के लिए गहरी जल निकास वाली दोमट उपजाऊ जो ज़मीन है वह बढ़िया रहे है। ज़मीन में 2 मीटर की जो गहराई है इसमें किसी डाल की भी बीज जो सख्त है, जिस तरह भी दौड़ा भाठा हम कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। पानी की सतह 3 मीटर की गहराई पर होनी चाहिए। दलदली और ज़्यादा जो लवणीय भूमि है, अम्लीय भूमि है, क्षारीय भूमि है, सेम की जो हमारी धरती है उसमें फल वाली जो फसल है वो हमने नहीं लेनी। फलदार पौधे लगाने खातर भाई 2 मीटर की गहराई तक ज़मीन में हमने नमूना लेना है, क्योंकि भाई जो ऊपरी सतह है उसके बजाय जो नीचे की ज़मीन में पोषक तत्व हैं वो फलदार जो हमारे पौधे हैं उनके लिए बढ़िया माने गए हैं। तो भाई बाग लगाने के लिए मिट्टी का जो परीक्षण है वो हम ज़रूर करवाएं, और इसमें जो नमूने लेने का तरीका है वो इस तरह रहेगा, 15 सेंटीमीटर का लेना है यानी कि भाई आधा फुट का। दूसरा जो नमूना हमने लेना है वो भी 15 से 30 सेंटीमीटर का यानी कि भाई आधा फुट से 1 फुट तक का। तीसरा जो हमने नमूना लेना है वो भाई 1 फुट से 2 फुट तक का यानी कि भाई 30 सेंटीमीटर से और 60 सेंटीमीटर की गहराई पर जो हमने तीसरा नमूना इसमें लेना है। अगला जो नमूना है वो भी 60 से 90 सेंटीमीटर का। उससे अगला जो नमूना है वो भी 90 से 120 सेंटीमीटर का। अगला जो नमूना है वो 120 से 150 सेंटीमीटर की गहराई तक का हमने लेना है। आखिरी का जो नमूना है वो 150 से 200 सेंटीमीटर की गहराई पर हमने लेना है। तो इस तरह से जो 2 मीटर की गहराई हमारी इसमें बन जाए है ये नमूने हमने लेने हैं। मिट्टी का नमूना लेते समय ये हम ध्यान रखें भाई जड़े भी कंकर की सतह पाई जा है उसकी एक तो मोटाई नाप लें कितनी मोटी है, और इसका जो नमूना है वो अलग हमने लेना है। जो नमूने हम ले हैं वो भी न्यारे न्यारे यानी कि भाई जो हमने जिक्र कराया 15 सेंटीमीटर का है, 15 से 30 सेंटीमीटर का है, 30 से 60 सेंटीमीटर का है, 60 से 90 का है। सारे नमूने हमने अलग अलग बिल्कुल साफ जो एक कपड़े के हमारे थैले हैं उनमें हम डाल लें। जो भी हमने नमूने लिए हैं उन पर हम नोट कर लें भाई ये 15 सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर से भाई 30 का है, ये 30 से 60 का है। हर एक नमूना अच्छी डाल साफ सुथरा जो कपड़ा थैला है उनमें नमूने लेके और उन पर जो उसकी गहराई है वो हमने नापनी है। इसके बाद जो भाई हमने नमूने लिए हैं मिट्टी परीक्षण खातर हर जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जिला विस्तार विशेषज्ञ जो मृदा और बागवानी विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता से हम करवा सके हैं, या फिर भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का जो मृदा विज्ञान विभाग है उड़ भी इनकी जांच हम करा सके हैं। इसके बाद भाई जो पानी की जांच है वह भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखा हाँ कि जो हमारा पानी है बोर का पानी है, ज़मीन का पानी है, उसमें हम दो ही चीज़ जाना है भाई, इसमें चाह नहीं पाटती और साबुन नहीं पाटती। और फिर हम देखा कि ज़मीन में दौड़क भी लियाओ है, सवेर हम देखेंगे जिस तरह भी धरती में पानी लगा दिया ट्यूबवेल का, जिस तरह वो बत्तर आंधी जागी बाह आंधी जागी एक दौड़क सी ज़मीन के ऊपर आंधी जागी जो कि हमारी ज़मीन की भौतिक दशा ने खराब करे है। कई बार ये भी हो जाए कि पानी में अड़का कड़वास से हमने सोचा भी इसमें चाय भी पाटे साबुन भी पाटे है, लेकिन जांच का आधार पर हमने बेरा पटा है कि भी वो पानी हमारी फसल ने सेधा को नहीं। और बागवानी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो पानी है वो जांच का आधार पर हम दें, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा खर्चा लगेगा। कई साल खातर हमारी ज़मीन है वह इसमें भाई खुंडे है, आंड फिराई हो है, टैंक बने हैं, नलकी बिछे हैं, यानी कि भाई फायदे की जगह हम घाटा का सौदा इसमें कर ले हैं। तो भाई सबसे पहले जो बागवानी विशेषज्ञ हैं उससे मिलें, इसमें भी जो भी हमने सरकार की तरफ से सुविधा मिले है भाई, जो भी इसमें अनुदान मिले है उसका हम पता करें, अच्छी जो एक बढ़िया एरिया वाइज भाई किस एरिया में किस डाल के बाग कामयाब हैं उस हिसाब से हम भाई बागवानी का काम करें। मिट्टी और पानी की भाई हम जांच कराए हैं तो बागवानी से हम अच्छा लाभ ले सके हैं। तो भाई कृषि की बातों में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। सुबह की 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

शाम 6:30 पर केनिंगस्टन स्टेडियम लंदन से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के मध्य आईसीसी महिला T20 क्रिकेट मैच के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे धान की रोपाई में सावधानियां विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार के साथ की गई बातचीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर गायक कलाकार होंगे सतपाल रोहतिया। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9:00 कार्यक्रम फिल्म संगीत में, दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत हमारी दूसरी प्रसारण सभा में, और रात 9:45 कार्यक्रम फिल्म संगीत में। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आप सुनेंगे साहित्य चर्चा। वार्ताकार हैं पुरुषोत्तम दास।
1: श्रोताओं,

0: साहित्य चर्चा के अंक में बात करेंगे दलित साहित्य के बारे में, और दलित साहित्य साहित्य की अनेक विधाओं की तरह ये भी एक ऐसी विधा है जो आज के आधुनिक साहित्य में काफ़ी कुछ चर्चा के विषय में रहती है। और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम दास जी। आप देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: धन्यवाद विनय जी।
0: तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि दलित साहित्य हमें किसे कहेंगे?
1: हाँ विनय जी, दलित साहित्य की बात करने से पहले शब्द दलित को समझना जरूरी है
0: जी।
1: दलित किसे कहते हैं
0: जी?
1: बहुत सारे वर्ड्स इससे पहले भी आए हैं, दलित से पहले अनुसूचित जाति, बहुजन, लेकिन दलित शब्द जो है वो बेसिकली वो संस्कृत भाषा से निकला है जिसका अर्थ होता है दल संस्कृत में। अगर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो डिफरेंट मीनिंग इसके डिक्शनरी के हिसाब से मिल जाते हैं
0: जी,
1: जैसे क्रस्ट, ब्रोकन इन टू पीसीज
0: जी,
1: एटसेट्रा
0: जी,
1: तो उसे दलित कहा जाता है
0: जी।
1: अब बात करते साहित्य में दलित साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई
0: जी। सबसे पहले हम यही समझ पा रहे हैं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, कि दलित साहित्य हम उस साहित्य को कहेंगे जो साहित्य उन लोगों के बारे में, उन आवाज़ों के बारे में, या फिर उस खास वर्ग के बारे में लिखा गया है, या फिर उनको प्रस्तुत करता है कि जो लोग दबे कुचले हुए हैं और जिनको कभी समान अवसर नहीं दिए गए हैं जी।
1: विनय जी, इस बात पे मैं आऊँगा
0: जी,
1: लेकिन इस पे थोड़ी सी असहमति जताता हूँ। दलित साहित्य वो नहीं है
0: जी।
1: दलित साहित्य कैसा, दलित कौन सा साहित्य है
0: जी?
1: चलो आपने शुरुआत कर दी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं
0: जी।
1: दलित साहित्य की शुरुआत जो है वो सबसे पहले जो है मई 1972 में दलित पैंथर मूवमेंट के जरिए हुई, जो महाराष्ट्र में।
0: ये क्या है दलित पैंथर मूवमेंट?
1: दलित पैंथर मूवमेंट जो है कह सकते हैं कि वो विद्वान लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का एक समूह था
0: जी,
1: जो महाराष्ट्र में धीरे धीरे इकट्ठे हुए
0: जी।
1: और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और यूएस के जो है ब्लैक पैंथर पार्टी से जो है प्रेरित हुआ
0: जी।
1: और इन्होंने जो है समाज में एक नई क्रांति लाने की कोशिश की कि समाज में जो दबे हुए या जिनकी आवाज़ अब तक जिनकी दबाई जा चुकी थी
0: जी,
1: उनकी बात को जो है आगे साहित्य में रखा जाए
0: जी,
1: किसी न किसी माध्यम से
0: जी।
1: तो ये एक दलित पैंथर मूवमेंट कहलाया जो धीरे धीरे पूरे भारत में जो है आगे फैला
0: जी।
1: इससे हम दलित साहित्य की शुरुआत कह सकते हैं, दलित पैंथर मूवमेंट से।
0: तो हम ये समझ पा रहे हैं कि दलित साहित्य की शुरुआत एक आंदोलन से हुई।
1: आंदोलन से हुई, एक आंदोलन था ये। अब बात आपने विनय जी की कि दलित साहित्य किसे कहते हैं
0: जी,
1: इसके बारे में बहुत सारी विरोधाभास बातें निकल के आती हैं, क्योंकि दलितों के बारे में साहित्य में तो बहुत पहले से बहुत कुछ लिखा जा चुका था।
0: हाँ।
1: मुंशी प्रेमचंद जी थे जिन्होंने दलितों की पीड़ा के ऊपर बहुत से कहानियां लिखी
0: जी,
1: जिसमें से कफन एक कालजयी कहानी कही जाती है
0: जी।
1: लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि ये दलित साहित्य का सही से इसमें जो है सही तरीके से वर्णन नहीं किया गया है
0: जी।
1: जैसे मैं कफन कहानी का जिक्र किया अभी
0: हाँ।
1: तो बहुत से दलित चिंतकों ने इस पे जो है विरोध जताया कि मुंशी प्रेमचंद ने जो घीसू और माधो के जो प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के
0: हाँ।
1: उसके जरिए सभी दलितों को एक तरह से बदनाम करने की एक बात, एक कह सकते हैं उनने जिक्र किया।
0: तो उसने, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कफन खानी है उसके जरिए जो प्रेमचंद का साहित्य है
1: हाँ।
0: प्रेमचंद का साहित्य जो दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी एक नकारात्मक तस्वीर पाठक के सामने रख रहा है।
1: बिल्कुल सही कि ऐसा कुछ वर्ग, एक वर्ग ऐसा सोचता है
0: जी,
1: क्योंकि उसकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया गया है कि जो पात्र हैं घीसू और माधव जो है
0: हाँ।
1: वो दलित परिवार से संबंध रखते हैं
0: जी,
1: मतलब उसे ये बताया गया है कि वो दलित मोहल्ला था, वो सारी बुराइयां जो है दलितों के अंदर पिरो दी गई
0: जी।
1: तो बाद में जो लोगों ने सोचा कि दलित साहित्य जो है कि स्वर्ण वर्ग जो साहित्य लिखता है दलितों के बारे में जो लिखता है
0: जी,
1: वो सिर्फ एक सहानुभूति बटोरने के नजरिए से लिखा जाता है
0: जी,
1: उसमें जो लिव्ड एक्सपीरियंस है
0: हाँ।
1: लिव्ड एक्सपीरियंस से मेरा मतलब विनय जी है कि भोगा हुआ अनुभव

0: जी
1: उसकी कमी रहती है।
0: भोगा हुआ अनुभव का मतलब ये कहेंगे कि जो कोई भी हमारा अनुभव है, अगर वो दलित व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के छुआछूत को अनुभव किया है, किसी भी भेदभाव को अनुभव किया है, या फिर किसी ऐसी त्रासदी को अनुभव किया है, तो वो अनुभव अपना स्वयं अपनी लेखनी से उतारे।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सही करे विनय जी।
0: हाँ
1: तो दलित साहित्य जो है, जैसे आपने शुरुआत में की, दलित साहित्य किसे कहा जाता है?
0: जी
1: ये बेसिकली जो दलित साहित्य जो है, कौन लिख सकता है, ये मूल पर्सन है।
0: जी
1: लेकिन अब उस मूल पर्सन पे पहले काफी सारे सवाल थे कि कौन लिख सकता है,
0: जी
1: लेकिन ये अब जो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि दलित साहित्य जो है एक दलित के द्वारा ही लिखा जा सकता है,
0: जी
1: क्योंकि उसमें वो अपना भोगा हुआ जीवन, लिव्ड एक्सपीरियंस जिसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ,
0: जी
1: वो उसका वर्णन उसमें सटीक तरीके से कर सकता है।
0: जी
1: जबकि जो नॉन दलित राइटर है वो सिर्फ रोमांटिसाइज करता है
0: जी
1: इसमें। जैसे मैं आपको एक जिक्र करूँ, एक साक्षात्कार के दौरान
0: जी
1: बहुत ही बड़े हिंदुस्तान के बड़े दलित लेखक और चिंतक है शरण कुमार लिम्बाले,
0: जी
1: सब कोई जानते हैं।
0: हाँ
1: तो एक इंटरव्यू में उसने कहा, साक्षात्कार में,
0: हाँ
1: कि जब मैंने लिखना शुरू किया दलित साहित्य,
0: जी
1: तो शुरुआत में उसने कहा कि मैं कविताएं लिखता था,
0: जी
1: प्रेम कविताएं लिखता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे लोगों से मिलना शुरू किया मैंने, तो उसने सोचा कि मैंने जीवन में प्रेम तो कभी किया ही नहीं, जो प्रेम कविताएं जो लिखता हूं उससे मैं उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा।
0: जी
1: तो उसने फिर क्या किया कि उसने जो है अपना जो दलित जीवन जो जिया उसके ऊपर उसने लिखना शुरू किया, और उससे क्या हुआ कि जो है एक दलित आत्मकथा
0: जी
1: एक अलग विधा के रूप में पाठकों के सामने आना शुरू हुई। इससे
0: जी
1: पहले दलित आत्मकथा को जो है साहित्य की प्रमुख विधा नहीं माना जाता था।
0: तो हम उस पर भी आ रहे हैं साथ के साथ में। तो आप ये कह रहे हैं कि जब शरण कुमार लिम्बाले की बात आती है, तो इसमें एक घटक ये है कि कुछ थ्योरीज विकसित की गई हैं, कुछ विधाएं विकसित की गई हैं कि जिसमें एक तो अनुमान, कि हम अनुमान कर सकते हैं कि दलित रहन-सहन ऐसा होगा, दलित सोच ऐसी होगी,
1: बिल्कुल
0: या फिर
1: सही
0: वो
1: कह रहे हैं।
0: व्यक्तित्व ऐसा होगा। एक है कि अनुभव, कि वो व्यक्ति खुद उस समाज उस वर्ग से आता है और वो अपने अनुभव को उतार रहा है। अनुमान को लगा के अगर लिखना, उसको साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत करना और खुद अपने अनुभव से लिखना, दोनों में एक आधारभूत फर्क हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सही कह रहे हैं विनय जी।
0: तो जब फर्क हो रहा है और इसमें जब दलित आत्मकथा लिखी जा रही है, दलित आत्मकथा से हम ये समझ पा रहे हैं कि कोई भी दलित व्यक्ति है जो उस समाज से आ रहा है और जिसने अन्य प्रकार की सभी कठिनाइयों का सामना किया है, वो अपने जीवन की कहानी में उनका जिक्र करते हुए अपने जीवन के बारे में विस्तार से लिखे। तो दलित आत्मकथा के साथ साथ में और कौन कौन सी ऐसी विधाएं हैं जिनमें दलित साहित्य लिखा या रचा जा रहा है?
1: हाँ विनय जी, सबसे पहले जो है दलित साहित्य जो है सभी विधाओं में लिखा जाता है,
0: जी
1: अभी भी लिखा जा रहा है। कविताएं प्रमुख विधा रही हैं दलित साहित्य की,
0: हाँ
1: लघु कथाएं रही हैं, शॉर्ट स्टोरीज रही हैं,
0: हाँ
1: उपन्यास भी रही हैं, ग्रिप ऑफ चेंज, काफी उपन्यास भी लिखे गए हैं।
0: जी
1: लेकिन आत्मकथा जो है वो एक प्रमुख विधा बन गई दलित साहित्य की।
0: जी
1: उसका एक प्रमुख कारण रहा कि उसमें जो है आत्मकथा इससे पहले भी लिखी जाती रही है।
0: जी
1: जो नॉन दलित राइटर थे या सो कॉल्ड इलीट वर्ग जो भारत का था,
0: हाँ
1: उन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। वो आत्मकथाएं और दलित आत्मकथा में एक मूलभूत फर्क जो है वो यही आता है कि नॉन दलित जो आत्मकथाएं लिखी गई उसमें मैं, आई जिसको इंग्लिश में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: जी
1: लेकिन जो दलित लेखक जब आत्मकथा लिखता है तो उसमें आई इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें हम, वी इंपोर्टेंट हो जाता है। हमसे मेरा मतलब है कि वो पूरे उस समाज को प्रतिनिधित्व देता है, प्रतिनिधि के रूप में देखता है, पूरे समाज का विश्लेषण जो है वो पूरे समाज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस आत्मकथा के जरिए।
0: तो आप जैसा शुरू में जिक्र कर रहे थे, शुरुआत में आपने बताया कि दलित साहित्य की शुरुआत दलित पैंथर आंदोलन जो कि महाराष्ट्र में हुआ था उससे हुई। क्या इसके बाद ये पूरे देश में फैला?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पूरे देश में फैला, और शुरुआत में काफ़ी जो है रेजिस्टेंस इसको झेलना पड़ा, काफ़ी विरोध इसको झेलना पड़ा। ये कोई साहित्य ही नहीं है, इस साहित्य को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए,
0: जी
1: ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे देख दिए, अब दलित

0: साहित्य जो है पूरे देश पे तो काफी इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, रिसर्च की जा रही है इसके ऊपर, और ये ही नहीं विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम का ये हिस्सा ही बन चुका है दलित
1: बिल्कुल।
0: साहित्य।
1: तो क्या सभी भाषाओं में लिखा जा रहा तकरीबन?
0: सभी भाषाओं में लिखा जा रहा
1: हिंदी
0: है।
1: पट्टी के बारे में क्या कहेंगे आप
0: हिंदी
1: इसमें?
0: पट्टी के बारे में दलित साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य, हिंदी बेल्ट में जो काफी दलित लेखकों ने दलित साहित्य के ऊपर काफी इस पे चर्चाएं की, काफी लिखा गया है।
1: जी
0: मैं बात करूं आत्मकथाओं की, बातें चल रही तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन जो आत्मकथा है,
1: हाँ,
0: वो आत्मकथा जो है एक पूरे वाल्मीकि समुदाय की जो है वो एक आत्मकथा है, उनकी पीड़ा को दर्शाता है।
1: और उत्तर
0: तो
1: प्रदेश के आंचल में
0: हाँ,
1: ये
0: उत्तर
1: कहानी
0: प्रदेश
1: लिखी
0: के,
1: गई
0: फिर
1: है।
0: मुजफ्फरनगर से, वो
1: हाँ
0: हिंदी बेल्ट से, और अन्य लेखकों ने भी
1: हाँ
0: अभी काफी जो है काफी और दलित आत्मकथाएं आ रही है। सुशीला टोक भोरे की भी आत्मकथा आई है, द
1: जी
0: शेकल्ड ऑफ माई लाइफ,
1: जी
0: सिकंजे का दर्द। अभी
1: हाँ
0: रिसेंटली उसका जो अनुवाद डॉक्टर प्रीति गुप्ता दीवान ने किया है उसका,
1: जी
0: तो एक दो आत्मकथा और भी है जिनका ट्रांसलेशन अभी उनका होना बाकी है, जिनका काम चल रहा है। तो काफी इस पे काम हो रहा है, काफी जो है अनुवाद भी किया जा रहा है दलित साहित्य की, इंग्लिश से हिंदी में इसका अनुवाद किया जा रहा है। जो इंग्लिश में लिखी गई आत्मकथाएं थी उनको हिंदी
1: उनका
0: में, और हिंदी में जो आत्मकथाएं लिखी गई है उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा
1: और अन्य
0: है,
1: भाषाओं में भी
0: अन्य
1: इसका
0: भाषाओं
1: अनुवाद।
0: में इसका अनुवाद भी लगातार जो है इसका जारी है।
1: एक और विश्लेषण कीजिए डॉक्टर पुरुषोत्तम आप। क्या दलित साहित्य में, क्योंकि मजदूर वर्ग है अपना, आज हम बैठ के दलित चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल मजदूर दिवस भी है, तो इस पे ये एक सवाल लाजमी बनता है क्योंकि दलितों का और दबे कुचलों का, इसके साथ साथ में जो मजदूर वर्ग है उनका बहुत ही मिला जुला एक नाता रिश्ता रहा है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मजदूर जो लोग होते हैं, जो कामगार लोग होते हैं, वो अक्सर पिछड़ी जातियों से ही आते हैं। तो दलित साहित्य में क्या इनका भी कोई प्रस्तुतिकरण हुआ है?
0: बिल्कुल विनय जी, इसका आपने बताया, दोनों का आपस में गहरा संबंध है,
1: जी
0: दलित और मजदूर जो है दोनों का आपस में गहरा संबंध है। और इसमें जो है दलित साहित्य में मजदूरों की स्थिति के बारे में काफी लिखा गया है,
1: जी
0: उसकी वजह ये कि दलित जो है मूल रूप से वो मजदूर ही है।
1: जी
0: जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन आत्मकथा में,
1: हाँ
0: उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि बताता है कि पूरे दिन काम करके पूरे दिन की जो मजदूरी जो उसको मिलती थी, उसके परिवार को मिलती थी, वो झूठन,
1: हाँ
0: झूठन का मतलब इस पे यह है कि छोटे जो बचा खुचा खाना था
1: जी
0: पेट भर के उखा लें, वही उनकी वो मजदूरी होती थी।
1: जी
0: इसी तरह से जब हार्वेस्टिंग टाइम जब आता था, जब फसल कटाई का जब समय आता था,
1: हाँ
0: तो पूरा दिन काम करने के बावजूद उनको इतना भी पैसा श्रम के रूप में नहीं दिया जाता था कि उनसे उनका घर का काम चल से, सिर्फ इतना ही मिलता था किसी तरह से वो बचा खुचा खाना जो बच जाता है वो खा करके अपने परिवार जो है आराम से पेट भर सके। तो मजदूरों का जब बाकी आत्मकथाओं में भी जो इसका आत्मकथाओं में मजदूरों की स्थिति के बारे में बताया जाता है,
1: जी
0: अपने अपने पिंजरे हैं इस आत्मकथा में बताया गया है। और इसमें विनय जी एक चीज और मैं देखूंगा, और
1: बताओ।
0: शायद अभी तक आपने सवाल उठाया नहीं,
1: हाँ
0: महिलाओं का जिक्र आपने शुरू करना चाहिए, मजदूरों के साथ महिलाओं का भी,
1: जी
0: तो महिलाओं की स्थिति क्या है दलित साहित्य में,
1: हाँ
0: तो मैं उस पर थोड़ा सा बोलना वो अगर आपकी इजाजत हो तो।
1: जी महिलाओं का, क्योंकि हम स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तो दलित होना और एक महिला होना, जिसको अंग्रेजी में एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, डबल मार्जिनलाइजेशन,
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कह रहे
1: उसमें
0: हैं।
1: इंटरसेक्शनैलिटी आ जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा खोल के बताइए।
0: हाँ विनय जी, ऐसा है कि जो पुरुष है वो दलित है,
1: जी
0: वो बाहर दलित है, लेकिन घर के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वो एक स्वामी बन जाता है।
1: स्वामी है और
0: हाँ, हम
1: पितृ
0: पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है
1: हाँ
0: उसके हिसाब से वो घर में जो है वो बाहर तो भेदभाव सहन करता है, सब कुछ सहन करता है, उसका दमन भी होता है, उसको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक स्त्री की स्थिति क्या होगी,
1: हाँ
0: वो तो डबल मार्जिनलाइजेशन की शिकार है,
1: हाँ
0: क्योंकि वो एक तो महिला है
1: हाँ
0: और ऊपर से वो दलित भी है,
1: जी
0: तो उसकी पीड़ा जो है वो डबल हो जाती है, धोरी हो जाती है,
1: जी
0: क्योंकि उसको पेट्रियार्कल सोसाइटीज को बोलते हैं इंग्लिश में,
1: हाँ
0: उसके उसमें उसको जो है काफी भेदभाव का सामना उसको करना
1: करना
0: पड़ता
1: पड़ता
0: है।
1: है।
0: तो
1: जी
0: महिलाएं भी अब क्या कर रही हैं कि धीरे धीरे आत्मकथाएं लिख रही हैं। तो
1: जी
0: विनय जी आप देखिए, जैसे हमारे समाज में कहा जाता है ना कि घर की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए महिलाओं को,
1: जी
0: लेकिन जब महिला

0: जब आत्म कथा लिखेगी तो
1: हाँ
0: सोच के देखिए वो उसका असर क्या होगा, उसको
1: हाँ
0: कितना विरोध समाज में झेलना पड़ेगा
1: हाँ
0: कि आपने ये आत्म कथा क्यों लिखी, कैसे
1: वो
0: लिखी।
1: चाहता है, वो दलित समाज हो या फिर बाहर का समाज हो, वो अपनी आत्मकथा में पूरे समाज को बेनकाब कर रही है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जी
0: सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ
0: और वो दलित महिलाएं भी आजकल जो है दलित साहित्य में अपना काफी प्रमुख योगदान वो दे रही हैं।
1: जी
0: बामा
1: बिल्कुल
0: का एक आत्मकथा करकू है, वी ऑफ माई लाइफ है, उर्मिला पवार का है
1: जी
0: और बेबी कामले का है, तो काफी जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया सुशीला टॉक भोरे की अभी आत्मकथा, ये सिकंजे का दर्द,
1: जी
0: तो वो महिलाएं भी जो है अपने जो है साथ जो जातीय भेदभाव हुआ वो तो उसमें जिक्र कर ही रही हैं, लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जिस तरह से उनको सामना उनको करना पड़ता है,
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है, उसमें उसका जिक्र उनमें दलित साहित्य वो करती हैं।
1: तो जब दलित साहित्य आया है, चलते चलते ये सवाल पूछ बैठते हैं आपसे, इससे क्या लगता है समाज में कुछ फर्क आया है या फिर इसने क्या दिया दलित साहित्य ने आधुनिक समाज को?
0: बहुत अच्छा सवाल विनय जी आपका। दलित साहित्य में जो समाज में काफी बदलाव आया है और दलित साहित्य पे चर्चा होती है, संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं और यही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पे कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं।
1: जी
0: हमारे अच्छे अच्छे विद्वान लेखक जो है, विद्वान चिंतक जो है बाहर जा करके ये जो है इन समस्याओं को उठाते हैं, दलित की समस्याओं को, तो उससे क्या है कि चेतना जिसको बोलते हैं दलित चेतना वो आई है लोगों में और वो जो है अपनी बात आगे रख पा रहे हैं और जो है निरंतर जो है इसका एक प्रयास है दलित साहित्यकारों का कि इसमें जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं, किस तरह से जो है दलितों की स्थिति के बारे में लिख करके पाठक के सामने वो बताते हैं किस तरह उन्होंने भेदभाव का सामना किया और समाज में आज की स्थिति क्या है, अभी
1: जी
0: आगे जा करके वो किस तरह से दलितों की स्थिति को और ज़्यादा बेहतर कर
1: तो
0: सकते हैं।
1: आज की स्थिति की आपने बात की है और कहीं ना कहीं आप सही भी हो, क्योंकि दलित चेतना है, दलित चेतना का तो विकास कर लिया गया है और जो विद्वान लोगों की दुनिया है उसके अंदर तो दलित चेतना आई है क्योंकि संगोष्ठियाँ हो रही हैं। लेकिन क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं कि दलित चेतना को जमीन पर उतरने में, ग्रास रूट पर काम करने में अभी कुछ चुनौतियाँ बाकी हैं?
0: काफ़ी चुनौतियाँ बाकी हैं विनय जी इसका जो है, अभी भी जो है ना काफ़ी मैं इसका जो है ना विस्तार से बात कर सकता हूँ अगर आपके पास समय हो तो, क्योंकि
1: जी
0: जो अभी भी एक वर्ग ऐसा मानता है कि दलित साहित्य कोई साहित्य ही नहीं है, जैसे हमने शुरुआत में कहा,
1: जी
0: एक जो है ये विरोधाभास दिखाई देता है कि दलित साहित्य या नॉन दलित साहित्य क्या होता है। अब इसमें देखिए एक कहते हैं विनय जी साहित्य समाज का दर्पण है,
1: जी
0: ये एक तरह से मैं कहूंगा कि मेटाफर है, ये बहुत अच्छा है, हम सुनते हैं एक मुहावरे के रूप में देख लीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है,
1: हाँ एक
0: दर्पण वो
1: मुहावरा।
0: होता है जिसमें जो चीज दिखाई जाए वो वैसी की वैसी दिखे वो, लेकिन कई बार क्या होता है दर्पण भी वो चीज सही नहीं दिखाई देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो साहित्य लिखा गया उसमें उसमें दलितों की स्थिति को सही तरीके से बताया ही नहीं गया,
1: जी
0: ठीक है ना,
1: हाँ
0: जैसे दर्पण के सामने हम लिख देंगे पी, तो कई बार वो साम दर्पण में क्या दिखाई गया तो क्यों दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा,
1: हाँ
0: तो इसी तरह से साहित्य में दलितों की स्थिति को सही तरीके से उजागर नहीं किया गया।
1: हाँ
0: अब जो दलित साहित्य जो आया है काफी पुराना तो नहीं है, इसका 1972 से इसकी शुरुआत जैसे मैंने बताया हुई है
1: हाँ
0: और इसमें निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि दलितों की स्थिति को, ताकि दलितों की स्थिति आगे और सुधरे।
1: जी तो चुनौतियां हैं हमारे सामने।
0: चुनौतियां तो विनय जी बहुत हैं, चुनौतियां तो बहुत हैं। अब जैसे कोई जैसे मेरा तो शोध विषय ये है
1: हाँ
0: महिलाओं की आत्मकथा,
1: हाँ
0: तो इसमें जब घुसते हैं इस फील्ड में इस विषय में तो काफ़ी कुछ जो है चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिलेबस का एक हिस्सा बन चुका है,
1: हाँ
0: लेकिन कई बार देखा जाता है कि संगोष्ठियों में देखा जाता है कि ठीक है भाई आप इस विषय पे ज़्यादा मत बोलिए इस विषय पे, जैसे बाहर विदेशों में हम जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से भाषण देने के लिए,
1: हाँ
0: तो कोई जैसे बताता है कि मैंने आप वहाँ पे जा करके दलित साहित्य के ऊपर चर्चा करनी है कि आप प्लीज़ वैसा वहाँ बाहर जाके दलित साहित्य के ऊपर चर्चा ना करें, तो चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये है कि जो देश की जो समस्या है जो बीमारी है वो तो पता लगना ही चाहिए समस्या का। तो
1: तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि चुनौतियाँ इस प्रकार से हैं कि अभी अभी वर्ग ऐसे हैं साहित्य जगत में जो दलित साहित्य को थोड़ा बहुत एक नकारात्मक परिस्थिति
0: नकारात्मक
1: में
0: दृष्टि से
1: देख
0: देखते
1: पा
0: हैं,
1: रहे
0: लेकिन इस
1: हैं।
0: साहित्य का भविष्य काफी उज्ज्वल है।

0: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम दास जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने दलित साहित्य पर हमसे विस्तार से चर्चा की। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: धन्यवाद विनय जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आपने सुनी साहित्य चर्चा। वार्ताकार थे पुरुषोत्तम दास। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाने के लिए सुनिश्चित किया। ये दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 जून 1908 को रूसी संघ के साइबेरिया पर हुए तुंगस्का उल्कापिंड के प्रभाव की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। साथ ही शुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जन को जागरूक किया जा सके, इसके लिए भी विशेष रूप से मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य शुद्र ग्रह से टकराने से होने वाले खतरे के बारे में जनता को जागरूक करना, साथ ही पृथ्वी के निकट किसी वस्तु के आने के विश्वसनीय खतरे की स्थिति में वैश्विक स्तर पर की जाने वाली संकटकालीन संचार कार्रवाइयों के बारे में जन जन को जागरूक करना है। श्रोताओं, हर साल नए थीम के साथ ये दिन मनाते हैं। इस दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस साल का हमारा थीम है ग्रह रक्षा और शुद्र ग्रह प्रभाव खतरे। ये खतरनाक शुद्र ग्रहों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें मोड़ने में वैश्विक सहयोग की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस दिन हम जनता को बताते हैं कि पृथ्वी को ब्रह्मांडीय खतरों से बचाने के लिए आवश्यक चल रहे अनुसंधान, प्रारंभिक चेतावनियों प्रणालियों और साथ ही संकट संचार रणनीतियों पर उनका ध्यान केंद्रित हो, इस सब के लिए इस विशेष दिन को हम सब मनाते हैं।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, कोई भी देश अपना सर्वांगीण विकास तभी कर सकता है जब इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने परिवार की तरह समझे और अपना योगदान उसमें सुनिश्चित करे। जिस तरह परिवार में रहने वाले सभी सदस्य अपना अपना योगदान देकर परिवार को सशक्त और प्रभावशाली बनाते हैं, उसी तरह से देश के प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छा से अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। ये योगदान हर व्यक्ति का अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति देश की स्वच्छता को बरकरार रखने, साथ ही आर्थिक प्रगति को अपनी बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, तो कोई व्यक्ति वृक्षारोपण कर देश के पर्यावरण को साफ सुथरा और प्रदूषण रहित रह सकने में उसकी भूमिका को अदा कर सकता है। श्रोताओं, जून का महीना पौधारोपण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय पौधारोपण के लिए भूमि का चुनाव कर गड्ढों की खुदाई आदि का कार्य अगर हम ध्यान से पूरा कर लें तो आने वाले मानसून स्तर में पौधारोपण किया जा सकता है। पौधारोपण करने के लिए वन विभाग द्वारा सही मार्गदर्शन दिया जाता है, साथ ही निःशुल्क पौधे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम सब गर्मी को झेल रहे हैं, गर्मी इस समय पर चरम पर है और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं प्रकृति का असंतुलन ही है। अगर प्रकृति को संतुलित करना है, गर्मी से बचाव करना है, तो ज़रूरी है एकजुट होकर हम इसके लिए काम करें। हम सबको संकल्प लेना होगा कि पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की कटाई, प्लास्टिक के इस्तेमाल और अन्य हानिकारक पदार्थों के इस्तेमाल को कम करना होगा, साथ ही पेड़ पौधे लगाकर पौधारोपण करके अपनी प्रकृति के लिए अपने काम को सुनिश्चित कर उसमें योगदान देना होगा।

तभी हम इस बदलाव को ला सकते हैं। बदलाव चाहे घरेलू हो या बड़े स्तर पर हो, उसके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास के साथ कोशिश करना। क्योंकि कभी भी एक कोशिश में हम बदलाव नहीं ला सकते, उसके लिए हमें बार बार हार का सामना करके जीत के लिए काम करना होगा। तभी समाज में, देश में, प्रकृति में बदलाव आ सकता है।

श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि बदलाव के लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास के साथ काम करना, कोशिश करना। हम रोज़ अपने जीवन में नित नई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसमें कभी जीत हमारे कदम चूमती है तो कभी हार का स्वाद हम चखते हैं। और जब भी कभी हार से हमारा सामना होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। हम कई बार अपनी काबिलियत पर ही संदेह करने लग जाते हैं, हमारा मनोबल कमज़ोर हो जाता है और डर हमें घेर लेता है। पर अगर उस समय हम सब हार को हार ना मानकर एक नया मौका मान लें तो कहीं ना कहीं उस निराशा से बच सकते हैं, और हार के समय आशा का दामन थाम कर नई कोशिश करने पर जीत भी ज़रूर मिलती है। ऐसे ही हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा से हमें कहते आए हैं कि जो कुछ भी होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ऐसे में हर सिचुएशन को हमें, हर चीज़ को हमें सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जब हम सकारात्मक नज़रिए से किसी भी सिचुएशन को देखते हैं तो उस हार से हमें एक नई जीत का संदेश मिलता है, और जब अपनी हार से सीख कर उसमें की गई कमियों को पहचान कर खामियों को दूर करके हम दोबारा से कोशिश करते हैं तो फिर हमें अपनी मनचाही मंजिल ज़रूर मिलती है, मनचाहा बदलाव जो हम समाज, देश, दुनिया या फिर अपने

0: इस गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163

0: अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराने

0: वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1,00,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग

0: ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured.

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं सतपाल रोहटिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे सतपाल रोहटिया। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सरस्वती चंद्र फिल्म के इस गीत के साथ।

सरस्वती चंद्रा फिल्म से गीत आपने सुना, आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की, गीत लिखा इंदिवर ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक से, और अगला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं खिलौना फिल्म से।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था खिलौना फिल्म से। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, वो कौन थी फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज़ में वो कौन थी फिल्म से गीत आपने सुना। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंक, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। जी विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हीरो फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने शब्द रचना की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इससे पहले आपने सुना महबूबा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शब्द रचना एक बार फिर आनंद बख्शी की थी और संगीत आरडी बर्मन का। आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत सुनिए प्रेम पुजारी फिल्म से।

नीरज का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म प्रेम पुजारी से। संगीत दिया था ST बर्मन ने। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं

0: है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनामिका फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी किशोर कुमार की, गीत लिखा मजरूह ने, संगीत दिया आर डी बर्मन ने। अगला गीत आइए सुनते हैं अखियों के झरोखे से, फिल्म से।

आंखियों के झरोखे से फिल्म से गीत आपने सुना, आवाज थी हेमलता की। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सुनवा रहे हैं कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। गीत लिखा समीर ने, संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में 10:05 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा।

0: इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। 2 घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July 2026, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code, UCC, will be implemented in the state. The Chief Minister announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the State Cabinet meeting on July 2nd. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects including marriage, divorce and adoption and submit its report within 4 weeks based on which the state government will formulate the code. Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tribute to the heroes of the Santhal Hul on the occasion of Hul Day. In a social media post, Mr. Birla remembered the immortal martyrs who made the supreme sacrifice for India's independence, tribal identity and social justice. He also paid homage to thousands of brave tribal men and women who, under the leadership of Sidho and Kanhu, launched the historic Santhal Hul against colonial rule, exploitation and injustice. Lok Sabha Speaker Om Birla has extended greetings to all elected representatives on International Day of Parliamentarism and to democracy association across the world. In the social media post, Mr. Birla said that Parliament is the supreme expression of the people's aspirations, rights and trust, where ideas are churned, policies are crafted

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:20 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: बदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और

0: भौतिक गुण होते हैं वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए। इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया। ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं। नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी,
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा

0: हवा के झोंकों से लो,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
1: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
1: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे भाई, खो देंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
5: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या क्या
7: क्या?
4: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
6: कू कू।
4: नीचा सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
2: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।

0: ख्याल खोदना बहुत जरूरी, चल कर उसको समझाऊं मैं। गाँव गाँव गाँव गाँव, लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। गाँव गाँव गाँव, अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काँ, काँ, काँ।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का, का, का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपीहा ना पिए
1: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: हाँ हाँ, इसकी यही सजा हो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर

0: आने लगे।
1: गाँव गाँव, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँव
2: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
3: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
3: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।
1: खाओ, खाओ, खाओ।
2: तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
3: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहा के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।

0: बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ये कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। एक बजने वाला है, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे समाचार हिंदी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
5: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
4: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
6: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
4: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है।

विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रेवाड़ी के बावल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने संतुलित खाद की उपयोगिता पर बल दिया।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और डिजिटल कृषि के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
2: आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है।
0: मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का भी औपचारिक शुभारंभ किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य छोटे किसान समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि धान की सीधी बिजाई करने पर प्रति एकड़ 4,500 रुपये और पराली प्रबंधन के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में केंद्र खोले गए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून को अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी, जिसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने केंद्र शासित प्रदेश में टीबी उन्मूलन में तेजी लाने हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने क्षय रोग के उन्मूलन के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सामुदायिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों की

0: सक्रिय सहभागिता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भागीदारी आवश्यक है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी परिधीय गांवों, श्रमिक बस्तियों तथा अन्य चिन्हित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर टीबी के व्यापक स्तर पर जांच की जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि चंडीगढ़ के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी रोगियों के लिए सार्वभौमिक टीबी जांच को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए ताकि छूटे हुए टीबी रोगियों की समय रहते पहचान की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कल संसद भवन में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए फिल्मी गाने सुनते हैं।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी

मैराग फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। राजा और रंक, अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर ने गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: ये था मुकेश का गाया पत्थर के सनम फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

ये था राजकुमार फिल्म का गीत, लता मंगेशकर ने गाया। इसे लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है पारस फिल्म से। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे, इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

ये था पारस फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें हमने सुनी। इंदिवर के बोल थे, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्मी गाने आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है फकीरा फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गाया हुआ फकीरा फिल्म का ये गीत था। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी गीतकार और इसी संगीतकार की एक और रचना आपको सुनवाते हैं, चोर मचाए शोर फिल्म का नाम है। आवाज़ें आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

ये था चोर मचाए शोर फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें आपने सुनी। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपके विचारों का, सुझावों का, प्रतिक्रियाओं का हमारे केंद्र पर स्वागत है। हमारा श्रोता मंच कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01262-255-446-255-447 और 255-448। ये थी जानकारी आपके लिए। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना। काला पत्थर फिल्म का नाम है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों का गाया काला पत्थर फिल्म का ये गीत था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: End the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी BLO विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 BLO पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।

0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई, जो खेती बाड़ी के अपने काम धंधे चल रहे हैं, खास तौर पर हम कपास की बात करें तो कपास में अपना सिंचाई की व्यवस्था करें भाई। किते किते जो है थोड़ा बहुत आराम ने बूंदाबांदी करी है, या अपना थोड़ा हा हल्की बारिश हुई है, किते न किते ऐसी भी हुई है कि उसका काम चल गया। लेकिन उन इलाके में देखें जितने बारिश ना हुई है, तो उसमें सिंचाई का प्रबंध करें। सिंचाई का प्रबंध भी हमने इस तरह से करना है कि पहले निराई गुड़ाई करें, खरपतवार निकालें, और फिर अपना उसमें जो खाद की मात्रा है वो आ जाए। गन्ने की फसल की बात करें, गन्ने की फसल में भी शायद है कि भाई निराई गुड़ाई करें, खरपतवार उसमें होने ना दें। और कई बार के वो है कि जो अपनी मोटी फसल है उसमें निराई गुड़ाई कर दे हैं, लेकिन जो खाद की मात्रा है वह हम थोड़ी कम दे दे हैं, क्योंकि जो नौलफ फसल है उसके अलावा और जो अपनी मोटी फसल है उसमें 1.5 गुना खाद की मात्रा पड़ेगी। और वह इस महीने का ही आखिरी दिन हाज भाई जो भाई रह रहे हैं वो अपना निराई गुड़ाई करके बत्तर आ जाए, उस टाइम पर खेत में जो है अपना खाद की मात्रा ज़रूर दे दें, लेकिन खरपतवार उसमें ना होने दें, क्योंकि खरपतवार होंगे तो फिर ज़्यादातर जो इसमें बीमारी आ जाए हैं। गन्ने की फसल की बात करें तो इसमें शुरू से लेकर है और इतने कटाई के लायक नहीं होता, इतने कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई कीड़ा ये इस पे जो है आक्रमण कर दे रहे हैं। ख़ास तौर पर कंसुए की गोब सूखनी शुरू हो जाए है, और देखें कि भाई जब हमें अपने खेत में जा हैं, अपने गन्ने की फसल में क्या अंडे फिरे हैं, तो ऊपर तक गोब सूख जाए, उसके पत्ते थोड़ा हाथ खींच के ऊपर नहीं देखेंगे तो नीचे उसमें जो है दिक्कत आई पाओगी। तो समझने के भाई इसमें जो है दिक्कत आ रही है, और उसमें क्लोरपायरीफास दवाई सिंचाई के साथ हम लगा सके हैं, या फिर धूड़ा हम ले सके हैं, वो हम इसका धूड़ा भी कर सके हैं, ताकि ऊपर तक पत्ता हम चला जाए और वो जो बीमारी है वह ख़त्म हो जाए, कीड़ा है वो नष्ट हो जाए। इससे प्रकार जो अपना चारे वाली फसलें हैं, ज्वार की बात करें, मक्का की बात करें, उनका भी अपना चारे की फसला का इस सही समय चल रहा है, जित बारिश और नमी सही तरीके से अपने खेत में होगी है, ज्वार की हम बिजाई करें, क्योंकि आगे पशुओं हरा चारा भी ज़रूरी है। और इसमें सोयाबीन की काश्त का भी समय चल रहा है भाई, कुछ व्यापारिक फूलों की काश्त भी करें हैं किसान भाई जो शहर के नज़दीक हैं, तो व्यापारिक फूलों की काश्त करके ना उससे मुनाफा से ही मिल जाए है, और शहर के नज़दीक होने में उसमें एक और भी बढ़िया काम हो जाए है कि भाई

उसने कम खर्चे में और ज़्यादा पैदावार उन्हें मिल जाए। खास तौर पर बात करें हम साग सब्जी वाली फसलों की, तो वो भी बथेरी सी चल रही हैं, जिनका समय चल रहा है, किसी का बिजाई का है, किसी का रोपाई का है, मिर्च हैं, टमाटर हैं, भाई भिंडी जो अपनी पुरानी चल रही है उसने छोड़ कर ने, और एक दूसरी की भी हमने तैयारी करनी है जो वर्षाकालीन भिंडी है। अगेती फूल गोभी की बात करें उसका भी समय नर्सरी में बिजाई का चल रहा है, तो बहुत सारा काम चल रहा है। बात करें हम धान की रोपाई की तो वो भी चल रहा है, क्योंकि धान की रोपाई में भी ऊँ तो भाई बहुत पहले आगे लाग रहे हैं, 10-15 दिन हो गए रोपाई कर देने, लेकिन बार बार फिर भाई बात कही जाए कि भाई धान की फसल की रोपाई उन इलाके में करें जित अपने दौरे पानी पात के भरपूर मात्रा में साधन हो और खेत भी थोड़ा शे माड़ा हो। जित पानी के साधन कम हैं उड़ धान की फसल का हमने लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धान की फसल पानी वाली फसल है और पानी अपने दौरे पहले ही कम है, चोई नीचे चले जाने जा हैं, तो इसमें हमने ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई दूसरी फसल ले लें, मोटे अनाज वाली फसल ले लें या बाजरे वाली ले लें, तो इन बातों का ज़रूर हम ध्यान रखें कि भाई उस फसल का विकल्प चुने जो हमारे खेत के लायक है। मजबूरी हो जाए अगर चुहा ऊपर है तो हम धान की फसल लें, ना तो ट्यूबवेल के साधन हैं या फिर नहरी पानी बतेरी मात्रा में है और ज़मीन में जल स्तर ऊंचा है, तो उड़ धान की एक मजबूरी हो जाए धान और गेहूँ, नहीं तो दूसरी फसल अगर हम ले लेंगे तो उसमें फसल चक्र भी हो जाएगा और अपनी धान की फसल तो अपना पीछा भी छूट जाएगा, क्योंकि अकेली धान की फसल लेने में ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वह एक तरह के कम होते चले जाएँ। बाकी आज जिक्र करेंगे भाई बारिश का जो पानी है यानी कि वर्षा जल संरक्षण, इसका हम किस तरह से प्रयोग करें, ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले भाइयों का मनोरंजन कराऊंगे, भाइयों को रागनी सुनवा दें, गायक कलाकार होंगे नरेंद्र डी गलिया और उनके साथी।

अजब बनगी इसी भारी क्यों नहीं किसे का भय मन्ना रही घर कुन।

सुनी भैया ने रागनी, गायक कलाकार थे नरेंद्र डिगलिया और उनके साथी। इनकी गाई और भैया ने रागनी एक और भी सुनाओगे, लेकिन जो जिक्र किया था हमने कि वर्षा जल संरक्षण, देखो भाई यूसा टाइम है और जित पानी की दिक्कत है, चोए बहुत तड़े ने हैं। राजस्थानी इलाक्यां की बात करें या और भाई जो इसे इलाके हैं जित पानी थोड़ा कम है, उड़े पानी की जो है कीमत का पता लग गया है कि भाई पानी के चीज़ जो है, जिते जल स्तर ऊंचा है, भरपूर मात्रा में जल के साधन हैं, तो वह इतने सोचे हैं कि पानी की कमी, लेकिन जल संरक्षण सारे के काम आवे है, चाहे कितने भी हम उसने अपना लें। अपने दौरे ज़्यादा पानी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसने व्यर्थ में बाएं जाएंगे, क्योंकि वो पानी भी अगर हम बचाओगे तो आगे वो कल के लिए काम आओगा और उन जगहों के लिए काम आओगा जिते पानी की कमी है। खास तौर पे बात देखें कि हम तो अब नालियां में पानी बहा दे हैं, गाड़ी दौड़ में घना घना पानी खर्च कर दे हैं, पशु नुहाण दुहाण में या बया बया पानी अंडे जहाँ जित पानी के साधन थोड़े ही ज़्यादा हैं, लेकिन जित राजस्थान की बात करें हम भाई पानी कम है तो उड़ो उन नबेरा पट्टे बेचारा ने पानी के चीज़ हो है, पानी की कीमत कितनी हो है और किस प्रकार से पानी ने बचा कर रखा जा सके है। उसने जो है वह अपना छता ने पक्की करावे हैं और वे नीचे पक्का होद बनाया जा है, छत के पानी ने इकट्ठा करे हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके अपनावे हैं ताकि उससे पता लग जाए कि भाई जो आगे जो आने वाले दिन हैं उनमें पानी की कोई दिक्कत ना रहे, बारिश का जो समय है उसमें अपना पानी इकट्ठा कर लें, और ये जो बांध बनाए जाए नदियाँ पे वो भी इसीलिए बनाए जाए कि आगे कोई सी कमी आ जाए, बारिश ना हो पावे, सूखा पड़ जाए या और थोड़ा हा बारिश और लेट सेट हो जाए तो बांध में से पानी सिंचाई के लिए पीने के लिए वो लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि पानी पानी के बिना जीना बड़ा मुश्किल है, जल ही जीवन है ये कह भी जा है और कह के जाए इसके ऊपर तो हम पूरी तरह से निर्भर भी हैं, क्योंकि पानी बतेरी मात्रा में है लेकिन वो खराब पानी है, पीने लायक पानी बहुत कम है, चाहे वो कहीं की भी बात करें, हम पूरे विश्व की बात करके चल रहे हैं तो उसमें भी ऐसा नहीं कि जमीन से हम सीधा पानी निकालना और वो बहुत बढ़िया पानी मिल जाए, क्योंकि सारे के सारे इलाके ऐसे नहीं होंगे, बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जितने हमें नलकूपों का पानी ट्यूबवेल का पानी पीने में यूं का यूं प्रयोग कर सके हैं, कुएं होया कर दे तालाब होया कर दे पहले वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि पेड़ कम हो गए, पेड़ कम हो गए तो भाई सूर्य की गर्मी थे वाष्पित थे होकर, और जो कुएं थे तालाब थे उनका भी इस टाइम पर तो पानी रोज़ के रोज़ घटते दिखे ही, घटने का मतलब क्यों हो जाए कि भाई पेड़ पौधे नहीं रहे और वाष्पीकरण होना शुरू हो जाए, धूप इतनी ज़्यादा पड़े है, तो इन हिस्सा में और ख़ास तौर पर जो रेतीले अपने इलाके हैं उसमें फसल के लिए फुहारा सिंचाई यंत्र प्रयोग करके ने वो भी हम जल में जो है बचाने का काम कर सके हैं, बागवानी का काम कर रहे हैं उसमें टपका सिंचाई की विधि अपना कर ने पानी की बचत कर सके हैं, वो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनमें जितना पानी की हम बचत करें तो वो अगली फसल के लिए काम आओगा, यूँ नहीं है कि भाई सीधा बा दिया पानी, वो टपका सिंचाई के द्वारा देखो इतना कारगर सिद्ध हुआ कि पानी की तो बचत की बचत हुई, उसमें खरपतवार भी कम उगे हैं, क्योंकि जो टपका सिंचाई है उसमें एक डिब्बे में पानी भरकर उसमें एक थोड़ा सा नसूर कर दें छेद कर दें छोटा हर, वो जो है टपक टपक कर पानी पड़े जाए तो वो पौधे की जड़ तक सही पहुंचेगा ना, तो इतना एकदम नीचे चला जाएगा, एकदम से अगर हम पानी ज़्यादा दे देंगे तो सारा का सारा रिश्का जमीन में नीचे चला जाएगा अगर पौधा की जड़ा तो दूर हो जाएगा, लेकिन टपका सिंचाई विधि बड़ी कारगर सिद्ध हुई है खास तौर पर रेतीले इलाके में। इसी प्रकार जो फुहारा सिंचाई यंत्र हैं उनके द्वारा भी भाई जड़ा तक नमी पहुँचाई जा और फसल हमारी ठीक ठाक बन जा, थोड़े पानी में बन जा, जो पानी बचत करेंगे वो अगली फसल में काम आ जा, इस तरह के तरीके हमने अपनाने पड़े हैं, और ख़ास तौर पर जो वर्षा जल है उसने हमें बचा लें, क्योंकि वो फ्री का जल जिसे नाम कह दें भाई पानी फ्री का उसने हम इकट्ठा कर लें और वो अगली फसल के लिए बड़ा सही तरीके से काम आ जाए, जिसमें हम साग सब्जी या और कुछ कोई खेती या अपना जो घर पे या आंगन में हम कर रहे हैं छोटे मोटे जो स्तर पर कर रहे हैं हम काम उसमें भी ऐसा ना हो कि भाई हम ज़्यादा

तो वेदस्वी भजन रागनी गाय कलाकार थे नरेंद्र डी गिलिया और उनके साथी। और वह जिक्र चल रहा था अपना के वर्षा जल संरक्षण का महत्व। तो वह जल संरक्षण चाहे वर्षा का हो, चाहे अपना नहरी पानी हो, चाहे अपना ट्यूबवेल का पानी हो, कोई सा भी पानी हो, पानी बचाओगे तो आगे हमारे काम आओगा। न्यू नहीं है कि भाई ईब हम रामर दौड़ मचा दें, आगे फिर पीने के पानी की किल्लत आओगी, फसलों के लिए भी बड़ी किल्लत आओगी, और ईब बचा के रख लेंगे तो वो हमारा कल के लिए, हमारा कल भी सुरक्षित होगा, हमारी फसलें भी ठीक ठाक होंगी और हमारे काम वो पानी आना है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए, ध्यान अपना जो है समय का भी हमने रखना चाहिए। भाई जो घड़ी है वो कह रही है कि कार्यक्रम का भी समय समाप्त होने वाला है, चल लेंगे सारे बाण बाण भैया ने। राम राम।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अभी तक आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ओन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30 और 4 सेकंड हुए हैं स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

युवा संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। संतोष शेखावत की ओर से उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, बहुत कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। और युवा साथियों, उम्मीद यही होती है सभी युवा साथियों से कि जिंदगी चलते रहने का नाम है और चलते रहना ही जिंदगी है, अगर दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में हम बात करें तो। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ गाने भी आपको सुनवाएंगे, कुछ विषयों पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है ये दिवस, यानी कि आज के

दिन मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शुद्ध ग्रहों से होने वाले संभावित खतरों, अंतरिक्ष अनुसंधान और पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। यह दिवस मुख्य रूप से 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में हुई तुंगुस्का घटना की याद में मनाया जाता है। साथियों, यह इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी क्षुद्र घटना थी जिसमें हजारों वर्ग किलोमीटर के जंगल नष्ट हो गए थे। इस महत्वपूर्ण दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा दिसंबर 16 में एक प्रस्तावित तौर पर, यानी कि प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। क्षुद्र ग्रह जागरूकता के दिवस के महत्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आम जनता को अंतरिक्ष से आने वाले संभावित खतरों के बारे में शिक्षित करना है। संभावित क्षुद्र ग्रह के टकराने की स्थिति में वैश्विक स्तर पर बचाव की रणनीतियों और संचार तंत्र को मजबूत करना है। क्षुद्र ग्रह केवल खतरा ही नहीं है बल्कि ये प्रारंभिक सौरमंडल के निर्माण और इतिहास के अनमोल स्रोत भी हैं। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, एक गीत सुनते हैं जिसे जिगरी दोस्त फिल्म से हमने लिया है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

जिगरी दोस्त फिल्म से गीत हमने सुना। रफ़ी साहब की बेहद ही खूबसूरत सी आवाज़ थी। और अब बात करते हैं संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। हर वर्ष 30 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है यह दिवस। यह दिन लोकतंत्र, मानवाधिकारों और लिंग प्रतिनिधित्व को बनाए रखने में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए साथियों समर्पित है। उद्देश्य की बात करते हैं तो लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, यानी कि लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में संसदों की भूमिका को उजागर करना है, सरकारों को जवाबदेह ठहराना और जनहित के मुद्दों को उठाना है। संसद में महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व के लक्ष्यों की समीक्षा करना है। तो ये इस दिन के महत्व के बारे में हमने बात की। और अब आगे बढ़ते हुए सुन लेते हैं कार्यक्रम में एक और गाना। सफ़र फिल्म से सुनते हैं। मन्नारी की आवाज़ है, इंदिवर ने इस गीत को रचा है और इसके लिए धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने।

आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं युवा संसार कार्यक्रम। साथियों, गर्मी का मौसम है और ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए खुद को हमें सबसे पहले क्या करना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। हल्के और ताज़ा मौसमी फल खाएं और भारी या बाहर के तले भुने भोजन से बचा जाए तो ऐसे में अच्छा होता है। और धूप में निकलने से पहले शरीर को अच्छे से ढकें और सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। भरपूर पानी पिए, कहते हैं कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। सादे पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू, शिकंजी और छाछ और सत्तू का सेवन हम कर सकते हैं। मौसमी फल और सब्जियां अपने आहार में शामिल कीजिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम हम शामिल कर सकते हैं। इनमें पानी और ज़रूरी विटामिन्स जो है साथियों भरपूर मात्रा में होते हैं।

बहुत ही जोशीला सा ये गीत हमने सुना, और सच में ये गीत सुन के युवाओं में एक जोश, एक उत्साह पैदा होता है। खैर, चलिए हम बात कर रहे थे कि गर्मी के मौसम में खुद को हम सेहतमंद कैसे रखें। तो विशेषज्ञ साथियों ये कहते हैं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि ऐसे में धूप में जाने से बचें और अपनी जो डाइट होती है उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि सूरज की किरणों से बचाव हमें कैसे करना है, चिलचिलाती धूप विशेषकर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक घर से बाहर निकलने से यदि बचा जाए तो साथियों ज़रूर बचना चाहिए, और काले चश्मे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के कपड़े पहने, ऐसे में ढीले ढाले कपड़े पहने जाएँ तो अच्छा है ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। सूती वस्त्र पहनने चाहिए, पसीना आसानी से सूख जाता है सूती वस्त्र यदि हम पहनते हैं तो। ज़्यादा भारी व्यायाम या वर्कआउट के बजाय योग प्राणायाम और हल्की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा आप ऐसे में बना सकते हैं। क्या होता है ना, हमारे युवा साथी हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत भारी एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे में विशेषज्ञ जो है वो ये कहते हैं कि भारी वर्कआउट करने से बचना चाहिए क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा पसीना भी ऐसे मौसम में निकालना अच्छा नहीं होता है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि हल्का फुल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। यदि आप अपनी सेहत के बारे में सचेत रहते हैं तो साथियों यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सेहतमंद होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। फ़िलहाल हम ये करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक गीत आपको सुनवाते हैं। अपनापन फिल्म से हमने इसे लिया है, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, और इससे पहले जो गीत हमने सुना था वो हमने लिया था संजू फिल्म से, सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल और साथ में साथियों की आवाज़ें थीं।

अपना अपन फिल्म से साथियों गीत हमने सुना, जिसमें आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और इस गीत के साथ ही समेट लेते हैं आज का युवा संसार कार्यक्रम। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये रोहतक केंद्र है, मीडिया वेव 262.47 मीटर पर। शाम के 6 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के

0: बेंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर शाम के 6:05:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

कार्यक्रम रूपरेखा में पहले जान लीजिए आज के शेष कार्यक्रम। कैनिंगटन स्टेडियम लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन पाएंगे आज शाम 6:30 बजे से। रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 10:45 पर।

आज के शेष कार्यक्रम आपने जानी और अब आपको बता दी कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में चर्चा का विषय। यह कार्यक्रम सुनिएगा कल रात्रि 9:30 पर, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हमारी सेहत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर भेंटवार्ता का विषय रहेगा महिला स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलू। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पा दहिया।

7:25 पर सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जो कि होता है समसामयिक चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित है।

दोपहर 12:30 पर NCERT प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित होगा। युवा संसार कार्यक्रम कल शाम 5:30 आप सुन पाएंगे, जिसमें विशेष होगा करियर काउंसलिंग। कर 20 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। ग्रामीण संसार में शाम 7 रहेगा बालक मंडली फोन इन कार्यक्रम। खेत कल्याण दोपहर 2:30 सुना जा सकता है। चर्चा रहेगी कपास फसल की देखभाल विषय पर। जान लीजिए कुछ संगीत के आकर्षण। रात 8:25 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। मन भावन फिल्म संगीत कार्यक्रम सुबह 9 सुना जा सकता है, जो कि रहेगा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आपके अनुरोध पर फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम, जो कि रहेगा आप श्रोताओं के खतों पर आधारित, सुनिएगा कल दिन में 1:10 पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम रात्रि 10 आप सुन सकते हैं। आपकी चिट्ठियों पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम होगा। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 7:30। एक फिल्म से कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर प्रसारित होगा। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर कल कलाकार होंगी नरेंद्र डिघलिया। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा।

रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 6:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि और समृद्ध किसान के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया। रेवाड़ी जिले के बावल हल्के के लिए करीब 125 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेवानिवृत्त हुए जनरल धीरज सेठ ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि पुलिस संरचना और तकनीकी संसाधनों को मजबूत किया जाएगा। और अंबाला के गांव धन्यौड़ा में बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय बच्चे को निकालने के प्रयास जारी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना उन्नत कृषि और समृद्ध किसान के बिना संभव नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और किसानों की समृद्धि ही भारत की समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि को लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाकर खेतों को बचाने की सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: मीडिया से

0: बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि भले ही आज इस अभियान का समापन हो रहा है, परंतु खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम होते रहेंगे।
1: खेत बचाओ अभियान आज देश भर में समाप्त हुआ है, लेकिन हमने संकल्प लिया, हरियाणा ने तो पहले ही संकल्प लिया है, धरती को खेतों को बचाने के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति यथावत रखने के लिए हर सप्ताह खेत बचाओ का कार्यक्रम कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। किसान भाई और बहनों की मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है, धीरे धीरे हम स्वस्थ खेत स्वस्थ माटी हमारे देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए उस अभियान में जरूर सफल होंगे।
0: रेवाड़ी जिले के बावल स्थित कृषि महाविद्यालय में खेत बचाओ अभियान के समापन पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से कृषि के नवीनतम नवाचारों पर आधारित कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एफपीओ मिशन का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
2: इस समय प्रदेश में कृषि बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी के एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रेवाड़ी जिले के बावल हलके के लिए करीब 125 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें 19 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बना राजकीय कन्या महाविद्यालय, 20 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बना नगर पालिका बावल के शॉपिंग परिसर, पार्किंग स्थल और 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बना पुलिस थाना रामपुरा का भवन शामिल है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें आईएमटी बावल के फेज 3 में 31 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कंक्रीट की सड़क, माजरा एम्स के लिए 28 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाला जलघर, 6 करोड़ 60 लाख रुपए से गांव रणसी माजरी में तथा 8 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से गांव बिदावास में बनने वाले 33 किलो वोल्ट के सब स्टेशन शामिल हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा गांव बिशनपुर गुज्जर माजरी, गुज्जरों की ढाणी से पीलियों वाली ढाणी तक 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संपर्क मार्ग, 4 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से गांव बखापुर में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 55 लाख रुपए की लागत से गांव मनेठी तथा 55 लाख रुपए की लागत से गांव भालखी माजरा के उप स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी गई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन।
0: नई दिल्ली में नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपने गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, साइबर अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर अहम जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस संरचना और तकनीकी संसाधनों को मजबूत किया जाएगा।
4: अगले 2 साल में 1200-1300 करोड़ रुपए हम जो खर्चेंगे उसका मेजर चंक इंफ्रास्ट्रक्चर, थाने, चौकी, पुलिस लाइन, हमारे बिल्डिंग्स हैं उनमें रिपेयर करेंगे। कोई सारा हमारे उसमें है। हमारा परम लक्ष्य यही है कि जो हमारा सिपाही है उसको बेस्ट वर्किंग कंडीशन मिले। अभी

0: पीछे जब फतेहाबाद में हमारे नाके पे एक मुलाजिम की डेथ हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी थी, उसको थोड़ी मेडिकल इश्यूज थे, फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी। हम अब कोई भी 45 साल से ऊपर के मुलाजिम को नाके पे नहीं लगाएंगे सीवियर कंडीशन में। तो ये सारी हमारी जो फैसिलिटीज की जो बात है, ये हमारी नोटिस में है और इस पे कार्य हम कर रहे हैं।
1: उन्होंने बताया कि मई माह तक पुलिस कर्मियों के कल्याण पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार से पुलिस कल्याण के लिए 750 करोड़ रुपए और गृह मंत्रालय से तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए 120 करोड़ रुपए मिले हैं। इन निधियों का उपयोग 237 परियोजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। अंबाला जिले के गांव धन्यौड़ा में आज एक 4 वर्षीय बच्चा निर्भय सिंह खेतों में बने बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। बच्चे को बोरवेल से निकालने के प्रयास शुरू हुए। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया,
2: वीर नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे। बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलते ही यहाँ पे हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और NDRF की टीम भी आ गई है। NDRF अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में इनकेस ये अटेम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है।
1: ये हादसा तब हुआ जब किसान मंजीत सिंह अपने 4 वर्षीय बेटे निर्भय को लेकर अपने दादा को रोटी देने के लिए गया था। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल विश्राम गृह में पीएम स्वनिधि लोक कल्याण मेले में 20 स्ट्रीट वेंडर को योजना के तहत ऋण प्रदान किया। इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा भी मौजूद रहीं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि और समृद्ध किसान के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा FPO मिशन 2026 का शुभारंभ किया और रेवाड़ी जिले के बावल हल्के के लिए करीब 125 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर 6:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई देखो, जो अपने खेती बाड़ी है उसमें खास तौर पे बात करें हम खादा की, तो उसमें दो तरह के आ जाए, एक तो देसी खाद आ जाए है, एक रासायनिक खाद आ जाए हैं। तो भाई देखो, रासायनिक खाद ठीक है, उपज हमारी बढ़ाई और उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे उत्पादन इतना नहीं था जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन हमने ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि भाई उत्पादन तो हम बढ़ा लें हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता, जो हमारी फसल पैदा हुए है और ज़मीन की ताशीर, वह हमारी किसी चल रही है इस रासायनिक खाद में, क्या उसी ज़मीन की ताशीर रह रही है, या जो गुणवत्ता पहले खाने में होया करती वह अभी भी उतनी रह रही है। तो इसमें जब हम इसकी तुलना करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाए, क्योंकि देसी खाद देसी स्वाद फसलों के अंदर और ज़मीन में भी ताकत बाद होया कर दी, लेकिन रासायनिक खाद अगर हम एक साल ना डालें तो फसल में हमारी में गिरावट आनी शुरू हो जाए। तो ये बात आओ कि भाई इसका डाला हम क्यों कर छोड़ दें, तो यूँ थोड़ा हा एक ईसा है कि जटिल विषय हो गया है, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके ने इसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी और देसी खादा की तरफ रुझान करना पड़ेगा, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, हरी खादें हैं, इनके साथ पहले चमाशे जब होया करते खेत में नरे गिंडे हुए हो जाया करते और वह ज़मीन ने खा खा का पोली बना करते नीचे तक वायु संचार होया करता, ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता बढ़िया कर दी,

लेकिन रासायनिक खाद एक करड़ी परत बना दे नीचे जो जमीन ने धीरे धीरे पथरीली बना दी चली जाए, यानी कि इतनी करड़ी तय हो जाए कि पानी सोखने का उसका वो नहीं रहता, उसमें ताकत नहीं रहती, नीचे तक नाइट्रोजन ऑक्सीजन जमीन में नहीं पहुँच पाती। कारण ये हो जाए कि भाई बार बार हम फिर उससे के डाड़े पड़ते चले जाए हर ऊपर तक वह जमीन हो जाए, कारण फिर यह हो जाए कि बाढ़ आने की भी समस्या, जमीन के उपजाऊपन कम हो जाए, पोषक तत्व तो उसके घट जाए हैं, तो बहुत से कारण हो जाए हैं। वर्मी कंपोस्ट जो है जमीन ने सही उसकी ताकत सुधारा है, जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत हो सारे के सारे देने की कोशिश करे है। तो वर्मी कंपोस्ट वो जिसने केंचुआ खाद भी कह दें हमें, वो अपने खेत में देने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके ना धीरे धीरे अपना इसका हिसाब बढ़ाते चले जाएं, और आगे चाल के फिर जो हमारी फसलें हैं उसमें भी गुणवत्ता आओगी और जो हमारी ज़मीन है उसकी ताशीर में भी बदलाव आओगा और सुधार आओगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और भाई आज कार्यक्रम छोटा है तो भाइयों का मनोरंजन करा दें, भाइयों को रागनी सुनवा दें, गायक कलाकारों के राजकिशन अगवानपुरिया और उनके साथी।

भैया दशमी भैया ने रागनी, गायक कलाकार थे राजकिशन अगवानपुरिया और उनके साथी। और भाई थोड़ा हाथ जिक्र कर लिया कि देखो धूप बहुत ज़्यादा तेज़, 2-3 दिन हो गए, तापमान बहुत ज़्यादा रहे है, लेकिन मौसम थोड़ा थोड़ा परिवर्तनशील भी होता जा है। आगे आगे थोड़े बारिश के आसार भी हैं भाई, थोड़ी सी तेज़ हवाएँ, और इसमें थोड़ा अपना भी ध्यान और अपने पशुधन का भी ध्यान ये ज़रूरी रखना है, क्योंकि पशुधन है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग रही है, बार बांध दे हैं उन, बार बार ताज़ा पानी, साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पिलाने की कोशिश करें, कई बार नुहाने धुआने की कोशिश करें। इसी प्रकार आप भी खेत क्यार में काम कर रहे हैं तो सही तरीके से पानी पात और सही काम अपना ध्यान मामना रखना है। और भाई ईब कार्यक्रम का समय समाप्त, चालना सारे बण भैया ने, राम राम।

आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा, कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। बिफोर दैट लिसन टू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20।
2: First ball 20.
3: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. I'm Sakshi Mandwal, and what may we say, the last 28 days have finally brought us to the first semi-final game that is all set to happen between West Indies and Australia of the ongoing ICC Women's T20 World Cup, all set to be held at the Oval today. In the next 1 minute, we shall be also witnessing the toss, which is all set to happen. But over here, I'm joined by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. नमस्कार।
4: गुड इवनिंग साक्षी। और यहाँ पर पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हैं आशा रावत, नमस्कार, फॉर्मर इंडिया बैटर।
5: नमस्कार।
4: राकेश राव हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। गुड इवनिंग राकेश।
6: वेरी गुड इवनिंग।
4: और साथ ही बीसीसीआई कोच हमारे साथ हैं रविंदर सिंह जी। नमस्ते। आशा, टॉस होने वाला है 30 सेकंड में, क्या लगता है हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोनियो जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
5: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो प्रेशर को वो नेचुरल होता ही है, सबको आता है, तो जो भी जाएगा पहले बैटिंग के लिए ही जाएगा।
4: राकेश,
6: कम्प्लीटली सेम चीज़ है क्योंकि थोड़ा बहुत हरा ज़रूर है लेकिन इट्स फुल ऑफ रन्स।
4: रविंद्र जी,
7: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया उन्होंने, मुझे भी लगता है शायद दूसरा चेज करेंगे।
4: चलिए सीधा केनिंगटन ओवल के मैदान पे चलते हैं लंदन, जहां पर टॉस हो रहा है और दोनों कप्तान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बिल्कुल तैयार हैं।
8: Finals here at the Oval, and we have two of the most skillful and entertaining

0: remaining teams in this ICC Women's T20 World Cup. It's the West Indies up against Australia. I've got the captains next to me. GS Lakmi is match referee overseeing the coin toss. Sophie Molyneux has the coin. Hayley Matthews will call.
1: Tails.
2: Tails is the call. It's heads.
0: Fall on the way of Australia. So, first of all, congratulations on your 50th T20 International. You've won the coin toss. What are you going to do and why?
3: We're going to have a bowl. Looks like a good pitch to come out here and hopefully put a bit of pressure on early.
0: Did you sort of toss and turn a little bit on the bowling? It's about 7 to 8 mils out there. Is that what sort of attracted you to it?
3: Yeah, I think so. It does look a little bit furrier than yesterday. It's just grown overnight. But, yeah, I think so. And just be able to get out here and have a run around first.
0: Big win against India. Any changes to the team at all?
3: No, I've got the same team.
0: Same blueprint then? You come into a big game like that, last of the round games. Do you sort of go, right, same approach, or do you say clean sheet up against the West Indies?
3: I feel like West Indies are, you know, an incredible team, and we have to bring our best. And a part of that is being able to play our style of play, no matter who we are coming up against. Yeah.
0: You know this one quite well. Captains at it and players at the Melbourne Renegades. Does that make it easier?
3: Probably not. We were actually just talking about the Renegades before, but, you know, she's always good to play against.
0: There we go. We'll find out in a second. Here we go. Thank you. All the best today.
3: Thanks, Jonesy.
0: Hayley, come on in. Batting first. Happy with that?
4: Yeah, I think it's a pretty good wicket here at the Oval. Not going to change too much. We probably would have had a ball first, but at the same time, we feel like we certainly got nothing to lose and can go out there and play a really fearless brand of cricket.
0: It's been a rollercoaster ride for you guys. You had the first couple of wins and then a little bit shaky at the end. What do you bring to this team to say, okay, these are the things that we really need to, you know, knuckle down double down on today?
4: Yeah, I think we need to keep believing, one, but at the same time, we just need some of our big players to step up. Myself included, I feel like that's probably what we've missed this tournament, but it still brings out a lot of positives, the fact that we have gotten to this stage without a lot of our big players really making big performances.
0: Looks like a kind of ground, too, that you need a big total on.
4: Yeah, 100%. Definitely a higher par score here, and probably, if not the best, one of the best wickets in England. So we're definitely going to have to get the score up in this first innings. Yep.
0: Big West Indian support here today as well, so you'll have them on your side. All the best today.
4: Thank you.
0: Australia have won the toss today, and they'll be bowling first.
5: So the news from Oval coming right there. Sophie Molyneux, the captain of Australian team, winning the toss and choosing to bowl first, as predicted also by prediction king Ravinder Singh ji. Ravi, aapke paas aati hu. आंकड़े में दिखा रहे थे कि चेस फ्रेंडली विकेट है और आपको लगता है हाई प्रेशर गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये सही निर्णय लिया है आज बॉलिंग करने के लिए?
6: देखिए, मेरे हिसाब से तो फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिछला मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलते, वो उन्होंने बहुत बड़ा चेस किया उन्होंने और अच्छा, बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं। देखिए, ये 20 ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। अब अगर इसमें वेस्ट इंडीज़ पर प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया को पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है। और यही प्रेशर उनको, यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज़्यादा प्रेशर तेज खेलने के चक्कर में आप विकेट्स गंवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है। अगर वो वेस्ट इंडीज़ जीतते, मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो यही मुझे लग रहा था प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते हैं।
7: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी। बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, अनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन। आशा, कैसे देखती हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को?
8: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए। पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूँ तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी। अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज़, उसके ऊपर, डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा, और जो कैप्टन है उनको तो बहुत, मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदर है, अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो।
5: राइट, आई विल कम टू राकेश, सिंस आशा जस्ट नाउ मेंशन दैट वेस्ट इंडीज इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन 3 ऑफ द मेन प्लेयर्स, 1 कैप्टन हेली मैथ्यूज, 2nd वी हैव डियांड्रा डॉटन, एंड 3rd ऑफ कोर्स वी हैव स्टेफनी टेलर।

0: majority of them have not even been able to perform throughout the season pretty well, but they're still the big names. How much of the load will be resting on their shoulders today to shine and prove something for the team? Definitely.
1: It becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you. Number one. So, and they have only two individuals who've crossed 100. So they have only two guys who have scored over you know, like 100 runs. And one of them happens to cross 150 as well. Now, when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor. So this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they're ruthless. They come very hard at you. Very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game when they have an off day. And history has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. And that's why they have such a fantastic record. Six times they have already had two hat-tricks of wins in the same tournament. I mean, in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India. They chased down a pretty challenging score and they did that. So it seems to be quite... they've been influenced by that decision.
2: जी बिल्कुल. और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से, तो आप हमें फ़ोन कीजिए. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342108 5. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने पांचों मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस. वहीं वेस्ट इंडीज़ ने आशा पहले तीन मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम दो मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं. तो दो लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं, कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी?
3: मुझे जहाँ तक लगता है, उनको अगर मैं वैसे बोलूँ तो अपनी उनको खोने के लिए उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैम्पियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने एक बार इसको ले रखा है चैम्पियनशिप को. तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज़ जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है. अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे.
0: यस अमित, आई थिंक वी हैव अ कॉलर विद अस ऑन द लाइन. नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं.
4: नमस्कार
1: जी,
0: हमारे सारे पैनलिस्ट आपको नमस्कार कर रहे हैं. बताएं क्या पूछना चाहते हैं आज आप कॉल करने के लिए.
2: जी शुक्रिया, कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
4: देखिए, स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है, जिस हिसाब से क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है, 20 ओवर में आपको पता कुछ भी. लेकिन ये जो अब वेस्ट इंडीज़ के लिए टारगेट है, वेस्ट इंडीज़ को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है. तो 150-170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला, तो 180 रन का टारगेट होगा. लेकिन देखिए, सेमीफाइनल्स ही होते हैं, आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेशर गेम है, आपको पता एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर.
2: राकेश जी, दोनों ही सेमीफाइनल कैनिंगटन ओवल में होने हैं, और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में.
4: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है.
2: जी,
4: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्ट इंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था, तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी, दोनों सेमीफाइनल में हारे.
2: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है यहाँ पर, कितना एक स्कोर बन सकता है वेस्ट इंडीज का?
1: देखिए, मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है, मैं इसको वेस्ट इंडीज़ की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है. ऑन पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना, अगर वो लोग निशाने पर हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ. स्कोर होना चाहिए 180. अगर आप एक वेस्ट इंडियन फ़ैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे. लेकिन विमेंस क्रिकेट इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसलिए मैं IPL के यार्ड स्टिक से या मेंस क्रिकेट के यार्ड स्टिक से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ. विमेंस क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ. लेकिन हाँ, लेट्स बी फेयर, प्रैग्मैटिक होके अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160.
0: राइट, और एक श्रोता हमारे साथ अमित थे.
2: हेलो, नमस्कार जी, अपना नाम बताइए.

0: जी क्या पूछना चाहेंगे? आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं। फिर जीतेगा कौन? आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती? जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए।
1: जी काफ़ी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई, और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में।
0: तो आशा आपको लगता है वुमेन्स क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब?
2: हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है, कुछ भी वर्ल्ड कप हो रहा है। बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रहे हैं, इवन सबको नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: मैं बता दूँ 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन आशा रावत।
2: थैंक यू
1: वाओ नॉट बैड। आपके पास आती हूँ रवि क्विकली, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें और सीजन में देखें टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर, और खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की स्ट्रेंथ रही वो उनकी

0: And that is where I hold Campbell responsible to a large extent. She stuck in there and she ended her innings. She played the longest. I mean, if you see the amount of time that she took, although she didn't get strike very regularly, but she couldn't even maintain 100% strike rate.
1: जी.
0: So that is disappointing.
1: जी, हेली मैथ्यूज जो कि कप्तान है वेस्ट इंडीज की, उन्होंने सर
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
4: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातियों बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
3: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.

0: ओ पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ई ओ सी आई कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और

0: तैयार की मतदाता सूची में शामिल था उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड

0: का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: In a row, and then they will face the winners between South Africa and England, and that indeed is going to be a very good match there. For the right-hander, there is a slip, backward point, cover point, extra cover, mid-off. There is a fielder there at short mid-on, a fielder there at deep mid-wicket, and a deep square leg. So offside has nobody outside the 30-yard circle. Both the fielders on the 30 outside the 30-yard circle are on the onside. So expect some kind of setting up of the batter to make sure that they play on the offside, because they covered up the onside, unless the batters go hammer and tong and play some daring shots. So 25 without loss, the target is 126. Henry comes and balls. At this time, a better route being taken. That ball is up in the air, two drops inside the circle, and that's a boundary onto the long on region.
2: Ye laga abha ka choka.
3: जितने भी स्ट्रोक्स देखने को अब तक मिले हैं, पूरे परफेक्शन के साथ गेंद को एकदम स्ट्रेट खेला, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गई और उठा दिया बाउंड्री लाइन के नजदीक।
1: There was a certain style and power involved in that, and a level of confidence. Here's the next one into the slot, and that's got a wicket there. Bowled a yorker, and wall has to go back. Played all around the ball, and the ball knocks off the stump. So she's gone on 16, and Henry gets the first wicket at the score of 29.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: जॉर्जिया वॉल बाहर चली गई है, पहला विकेट गंवा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्या ये विकेट वेस्ट इंडीज की उम्मीदों को वापस ला सकता है? क्या ये विकेट वेस्ट इंडीज की उम्मीदों में एक नई जान फूंक सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो उनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो दुनिया की तमाम टीमों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। जॉर्जिया वॉल 153, मूनी 126, लिचफील्ड 140, पेरी 120, इस तरह के स्ट्राइक

स्ट्राइक रेट देखें, तुमका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो दुनिया की तमाम टीमों की तुलना में सबसे ज्यादा है। जॉर्जिया वॉल 153, मूनी 126, लिचफील्ड 140, पेरी 120, इस तरह के स्ट्राइक

ने इस गीत को रचा है और मदन मोहन का संगीत है। सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश पर मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा और नरेंद्र तनेजा हैं इनके साथ। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। मुक्तसर से आप हैं बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर और नवनीत, साथ में इनके निशु। पुणे से खतलिक भेजते हैं पंकज वाडोदे, आर्य और आदि। जरुड़ वरुड़ से आप हैं बाबा साहेब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे और रजनी कानीरे।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में धरती फिल्म से गीत हमने सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अब सुनवाते हैं आपको राजकुमार फिल्म से गाना। आवाज़ फिर से एक बार मोहम्मद रफ़ी की है, शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इन दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश इस प्रकार से है, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का खत हमें मिला, कनीरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका और हार्दिक साथ में इनके वंश बता, संबलपुर कांकेर से फागुन राय यादव ज्योति ओजस्वी इशिका साथ में इनके तेजल, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू और मोहित, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडके नंदा हनुमान उत्तम स्वराज।

संचय गीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब सुनते हैं आप सभी साथियों की फरमाइश। राजनगर मधुबनी से कुश्मेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा रंका रानी, मौसम, संगीता रुद्र और रिद्धि इनके साथ। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हमारे श्रोता हैं मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक, पंखुरी। आप हैं राजनगर गांधी चौक से, शांति निकेतन से, मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मयराज और गुनगुन। और ये ख़त हमें मिला है सुरेश वाड़ी औरंगाबाद से। लिखने वाले हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहन बोरगांवकर। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म से गाना, आवाज़ आशाताई की।

काम, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है और फरमाइश आप सभी की है मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता जाजोरिया, गगनदीप आरजू और बेबी आरजू जाजोरिया, करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, बेरडी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुने इंतकाम फिल्म से ये गाना।

0: साथ ही संपन्न हुआ मन चाहे गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। रात्रि की 11 बजने को है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। रिले कर रही हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण

0: छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth.